0: and Geek City. Get ready for more of your favorite music after this short commercial break.
1: Royal Travel brings you Fall 2026 Umrah Package. Starting from November 28th through November 29th, Umrah packages starting from $2,995 includes round trip airfare from Houston to Saudi Arabia, 4-night stay in Medina and 4-night stay in Mecca in 5-star hotel, visa services for all U.S. passports, ziyarat in Medina and Mecca, transportation in trains, rides from Mecca to Medina, 1 free night stay over in Dubai. For booking and more information, please call Royal Travel at 281-498-1800 or email umrah@royaltraveltexas.com.
2: Shahi Darbar Grill & More. Try some of their best sellers. For Sangeet Radio listeners, choose chicken tikka leg, chicken borti, malai borti, chicken seekh kebab, beef seekh kebab, or choose butter chicken, goat paya, beef nahari. Combo packs are still available at Shahi Darbar Grill & More. Get your favorite grill or curry items for a limited time at special price at Shahi Darbar Grill & More. Located for you guys off the corner of University Boulevard in Telfair. Call today to place your orders in advance at 832-532-0532.
3: जिसने एक जिंदगी बचाई गोया उसने इंसानियत बचाई. एसआईयूटी नॉर्थ अमेरिका इज सेलिब्रेटिंग 26 इयर्स ऑफ कंपैशन एंड हीलिंग ऑन सैटरडे 10th अक्टूबर 2026 एट 6 पीएम. एक ऐसा शानदार इवेंट जहां पर आपकी डोनेशन किसी की जिंदगी बचा सकती है. गेस्ट प्रमोशन बाय फैसल कबाडिया.
4: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल कबाडिया एंड आई विल बी इन ह्यूस्टन ऑन अक्टूबर 10 इन सपोर्ट ऑफ एसआईयूटी नॉर्थ अमेरिका. एवरी डे एसआईयूटी सेव्स लाइव्स बाय प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट. आइए मिलकर SIUT ka saath dein. I'll see you inshallah on October 10th.
3: This event is happening at Hyatt Regency, Houston West, 13210, KT Freeway, Houston, Texas 77079. For more information and donation, visit siut.org or call 713-777-1214. 713-777-1214.
5: You're listening to Sungeet Radio, only on 95.1 FM.
6: वेलकम बैक ह्यूस्टन. आप सुन रहे हैं संगीत रेडियो पे प्राइम टाइम विद अहद. और संगीत रेडियो जो कि है नंबर वन देसी हिट म्यूजिक स्टेशन, और एफएम की फ्रीक्वेंसी है 95.1, और आप इसके अलावा एएम की फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं 1460 पे. जी हाँ, 7:04 हो रहे हैं, आपका मेरा साथ है 8 बजे तक. और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर कम्युनिकेशन गैप के हवाले से कि क्यों क्रिएट हो जाता है और क्यों हमारे दरमियान ये लोगों के दरमियान इतना क्रिएट हो रहा है, हल कैसे करेंगे और किस तरीके से जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस मसले को हल करके. क्योंकि कम्युनिकेशन गैप अगर आपने हल कर लिया, इस गैप को ख़त्म कर लिया, तो यकीन जानिए बहुत से काम आसान हो जाएंगे. और फैमिलीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा है ये चीज़. और आजकल वही जो एक रिलेशन चल रहा है पेरेंट्स और बच्चों का के दरमियान एक खिंचाव वाला, कि बच्चे अपनी बात जो कह रहे हैं वो पेरेंट्स नहीं समझ रहे, फिर पेरेंट्स उनको जो समझाना चाह रहे हैं वो बच्चे नहीं समझ रहे. तो बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा और काफ़ी घरों में देखा गया है कि भाई हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, तो बच्चे सुनते हैं, बच्चे सुनते क्या हैं मतलब समझते क्या हैं इस बात को. वो ये समझते हैं कि आप मुझे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जबकि वो भले की बात बिल्कुल कह रहे होते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से जब बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मतलब आई नीड सम स्पेस, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो पेरेंट्स उस चीज़ को किस तरीके से सुन रहे हैं. पेरेंट्स सुन रहे हैं कि तुम हमसे मतलब दूर होना चाहते हो, मतलब हमारी औलाद हमसे दूर होना चाहती है, तो पेरेंट्स इस बात को यूं समझ रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ इंटेंशन और इंटरप्रिटेशन के बीच जो एक गैप आ जाता है, तो वहाँ वो एक सबसे बड़ा मसला है. तो पेरेंट्स का कंसर्न बिल्कुल रियल हो सकता है, और जो बच्चों की जो नीड होती है उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, वो बिल्कुल रियल हो सकती है, सच हो सकती है वो. तो ब्रिज कैसे बनेगा भैया, ब्रिज कैसे बनेगा, एक दूसरे को इंटरप्ट किए बगैर कैसे बनेगा. तो पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला क्या है क्या रहा है. वही वाली बात आ जाती है अगेन कि हम बोलने ही नहीं देते किसी की, पहले बात सुनते नहीं, हम तैयार होते हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए और एक लड़ाई डालने, एक खड्डा डालने कि उसकी बात को काटने के लिए. पहले अगर आप किसी की बात को बीच में काट देते हैं तो होता यह है कि गुस्सा समटाइम्स और बढ़ जाता है और बात गलत तरफ चली जाती है. पहले एक बंदे को पूरी तरह अपनी बात कर लेने दें, ए टू जी पूरी अपनी दास्तान वो बोल ले, देन आप जो है वो बोलिए. यकीन कीजिए बहुत फर्क पड़ता है. तो पहले बोलने वाले को बोल लेने दीजिए और चीज को सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपना जो पॉइंट है आप वो बिल्कुल एक्सप्लेन करें। और हर कॉन्वर्जेशन को लेक्चर या आर्ग्यूमेंट बनाने की जो है वो बेसिकली जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ ये कहना ही काफी होता है कि मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, ये जुमला जो है ना यार, ये बहुत अच्छा जुमला है। आप किसी को इतनी तसल्ली और इतनी उम्मीद, इतना इत्मीनान दिला रहे हैं कि जब कोई बंदा आपसे कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है, आपने पूरी बात पहले तो सुनी और फिर आप जब आगे से ये बोलते हैं, मैं बेटा आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आपकी बात को, आपकी टोन बड़ी मैटर करती है, आपका जो जुमले जो अल्फाज हैं उसका जो सिलेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आप यकीन करें कि बहुत से मसले हल हो जाते हैं। Understanding always comes before correcting. जी हाँ, इस वक्त प्रोग्राम में एक और ट्रैक शामिल करेंगे और साथ साथ बातें तो चलती रहेंगी, और हम जैसे जैसे आगे प्रोग्राम में जाएंगे हम मज़ीद इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप और हम मिलके जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और जो हमारे दरमियान कहते हैं ना नाराज़गियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, एक गैप है कम्युनिकेशन का, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो छोटी छोटी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने अंदर हम जब ख़ुद से पैदा करेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल हल हो जाएंगी और आराम से हल हो जाएंगी। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कि बात की कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से हम मूवीज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं जिसके अंदर बात हो रही होती है और मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है किसी भी तरीके का। तो अभी मुझे एकदम से एक ड्रामा याद आया इस वक्त, जिसका मैं अभी इस वक्त सॉन्ग भी बल्कि प्ले कर रहा हूँ, जो कि समर जाफरी की आवाज़ में है और बहुत पॉपुलर सॉन्ग है मैं रहूँ। ये एक ड्रामा आया था परवरिश ARY डिजिटल पे, और उसके अंदर बेसिकली उस ड्रामे का पूरा थीम ही यही था के पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो एक जंग है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको कैसे हल करना है, बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं उसको देखें, उसको सुने, उसको समझें। आजकल की जनरेशन बड़ी अलग जनरेशन है ये। हम ये समझते हैं कि अब क्योंकि अगर पेरेंट्स बन गए हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, हम इस एज में जब थे तो तब ऐसा होता था। नहीं, यही हम सबसे बड़े तो बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम जो हैं बेसिकली उसी दौर में चल रहे हैं अब तक। अगर हम 18-20 साल वाली उम्र के जब थे, हम उस दौर की बातें कर रहे हैं, और ये दौर और वो दौर में कितना फ़र्क है, कम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी देख लें, रिसोर्सेज देख लें, सब कुछ तो बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो ये जो नए दौर का जो जेंजी है वो भी बेसिकली बिल्कुल बदल चुका है। तो उसको समझना और उसकी बात को उसके ऊपर गौर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे वो बातें कर जाते हैं कि ये वो चीज़ें हमें सिखा देते हैं, बता देते हैं, जो कि शायद हमें भी नहीं पता। हमसे कई अच्छे अच्छे स्मार्ट डिसीजंस वो ले सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास तजुर्बा है, सालों का तजुर्बा है, ज़िंदगी भर का लगाया हुआ तजुर्बा है। लेकिन कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मशवरा, कोई ऐसा आइडिया बाज़ दफ़ा आपको कोई यंग बच्चा या बच्ची कोई दे देता है, जो कि उसकी उम्र हार्डली 18-22 साल के दरमियान होती है, और आप हैरान हो जाते हैं यार, और फिर आप बड़ा प्राउड फील करते हैं यार कि मेरे बच्चे ने या मेरे भांजे ने, मेरे भतीजे ने इतनी अच्छी बात कैसे कर दी, मतलब इसका जहन इतना अच्छा कैसे है। तो अप्रिसिएशन बनती है वहीं पर। ये ट्रैक जो है वो मैं इस वक्त शामिल करूंगा समर जाफरी की आवाज़ में। इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। ट्रैक का नाम है मैं रहूं, इसका स्पॉन्सर किया है कॉन्टिनेंट ट्रैवल ने। 7:10 हो रहे हैं आपका मेरा साथ है 8 बजे तक, तो सुनते रहिए संगीत रेडियो।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संगीत रेडियो पे प्राइम टाइम विद अहद, और आपका मेरा साथ 8 बजे तक है। और आज हम प्राइम टाइम विद अहद में बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन गैप की, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में, और इसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो जन्म ले लेते हैं। तो उसको किस तरीके से हल करना है, क्या वो तरीके होंगे जो कि हमें अपनाने पड़ेंगे, और जो जनरेशन्स का जो गैप है स्पेशली उसके अंदर ये मसले बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रहे हैं। जैसे कि नई जनरेशन जिसको हमने लेबल किया है जेन जी से, और जो ये ओल्डर जनरेशन है तो उनके बेसिकली कम्युनिकेशन स्टाइल जो हैं उसके अंदर भी बड़ा डिफरेंस है। कुछ लोग यानी कि जैसे कि फ़ोन कॉल्स को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट को करते हैं, कुछ लोग वॉइस नोट्स को करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्लीज़ कॉल मी, और दूसरा कहता है कि कैन यू जस्ट टेक्स्ट मी। तो ये भी बड़ा डिफरेंस है कि ओल्डर जनरेशन के लिए फ़ोन कॉल जो है वो बड़ा रिस्पेक्ट और कनेक्शन जो है उसका एक तरीका हो सकती थी, लेकिन जो आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए अगर कोई अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल आ जाए तो वो उसके लिए क्या पता भाई स्ट्रेस हो सकता है। तो ये जो जेन ज़ी है, ये स्मार्टफोन, इंटरनेट और ये जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन के जो एक एनवायरनमेंट में ग्रो हुई है ना, तो ये बस अब यही वाली बात है कि बड़ा डिफरेंस है वो वाली कम्युनिकेशन में, पुरानी वाली और आज वाली में। लेकिन देखिए, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये नई जनरेशन कम्युनिकेशन नहीं करना चाहती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन का डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो प्रेफर करती हो, जो कि हम नहीं समझ रहे हों। तो ब्रिज बनाने का बस यही तरीका है कि आप पूछ सकते हैं कि तुम किस तरह बात करना प्रेफर करते हो, जैसे कॉल, टेक्स्ट, वॉइस नोट या फेस टू फेस। इसी तरीके से मतलब हर जनरेशन को दूसरी जनरेशन का स्टाइल समझने की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेसिकली इसको यूं समअप करेंगे कि डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल डज नॉट ऑलवेज मीन लैक ऑफ रिस्पेक्ट, बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग मुझे लगता है अफेंड हो जाते हैं कि यार मैम कॉल कर रहे थे, हमारी कॉल जो है ना वो काट दी और कॉल करके बोल रहे हैं कैन यू प्लीज़ टेक्स्ट मी, तो इस चीज़ को बदतमीजी जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जिस चीज़ को अगर बदतमीजी समझ रहे हैं, दूसरा जो है वो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं समझता, वो दिल से आपकी बिल्कुल इज्जत करता है। लेकिन हाँ, आपने गलत समझा उसके इस मैसेज को जो उसने लिखा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें मोल्ड होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अपने आप को धीमी आँच कहते हैं ना, वो धीमी आँच पे लाना पड़ेगा, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम हर वक्त जो है वो उबाल वाली सिचुएशन में रहेंगे तो बस वहाँ तो फिर झगड़े, मसले और कम्युनिकेशन के मसले मज़ीद बढ़ेंगे। अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल बताऊँ, मेरा जो है वो बेसिकली अभी तक भी यही है कि कॉल मुझे ज़्यादा सही लगती है, कॉल नहीं तो उसके बाद वॉइस मैसेज, और वो नहीं तो उसके बाद अगर मैं एक और दर्जा दूँ तो फिर वो जो है मैं वो टेक्स्ट को देता हूँ। लेकिन लोग इतने मसरूफ़ हैं कि अगर कॉल पे नहीं बात कर पाते तो मैं कहता हूँ ठीक है, बस वॉइस नोट एक अच्छी चीज़ है, बड़ी दरमियान का रास्ता लगता है मुझे, आपकी आवाज़ भी पहुँच रही है, आपका इमोशन आप सही तरह वो भी चलो कन्वे कर देंगे, ठीक है। फ़ोन नहीं है तो चलो ये बेहतर है, टेक्स्ट से तो बेहतर मुझे वॉइस मैसेज लगता है कि यार ये एक अच्छी चीज़ है, चलो ये कर देते हैं। और जब भी टाइम मिलेगा सामने वाले को वो भी फिर मुझे वॉइस मैसेज में रिप्लाई करे। लेकिन तब बड़ा गुस्सा आता है कि जब आप इतना लंबा 2 मिनट का किसी को वॉइस मैसेज कर दें, बहुत तफसील से अपने दिल का हाल बयान करें, और सामने वाला आगे से बोले यस आई अंडरस्टैंड, यहाँ यार ऐसा तो होता है, तो मतलब ये यहाँ पर आ जाता है फिर मसला। फिर अगली दफ़ा ना आप सोचते हैं नहीं यार, अब जो ये इतनी मेहनत से मैंने इतनी अपनी रुदात सुनाई थी सामने वाले को, सिर्फ इतनी बात थोड़ी मुझे उसकी सुननी थी, थोड़ा तो वो कुछ और भी बोलता ना यार, आगे पीछे ऊपर नीचे जुमलों के अंदर कुछ तो करता। फिर हमारा दिल करता है यार कि अल्फाज मजीद होने चाहिए थे, थोड़ा और वो कुछ बोल देता। तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली इस चीज़ के अंदर जाएंगे और सोचेंगे तो मुझे लगता है कि फिर मसले बढ़ते ही रहेंगे। आजकल तो यही चल रहा है भाई कि मैसेज पे, टेक्स्ट पे बड़ी शॉर्ट से शॉर्ट बात आप करें बस, और आप अपने कामों में लग जाएं। फिर किसी के पास नहीं है टाइम कॉल्स पे बात करने का लंबी लंबी, वो दौर अब चले गए फ़ोन वाले, अब बस टेक्स्ट वाले जो हैं वो दौर आ गए हैं। तो अब ये नई जनरेशन तो यही प्रेफर करती है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो चाहते हैं कि भाई बात हो, सामने बैठ के बात हो, या तो फोन कॉल पे बात हो, और फिर आराम से लंबी लंबी बातें हों। अच्छा, वेलकम करेंगे हम यहाँ पे उम्मे उस्मान, हमारी बड़ी रेगुलर लिसनर हैं उम्मे उस्मान, थैंक यू सो मच, आप हमें हमेशा याद रखती हैं और बड़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस करती हैं। तो इस वक्त हमें
व्हाट्सएप बोर्ड पे इनकी तरफ से एक बड़ी अच्छी पोस्ट जो है वो मुझे रिसीव हुई है, तो वो मैं बिल्कुल अभी शामिल करता हूँ। बड़ी अच्छी बात। कभी हम भी यारों के साथ बेफिक्र जिया करते थे, छोटी छोटी बातों पर दिल खोल कर हंसा करते थे, ना कल की फिक्र थी ना बिछड़ने का डर था, बस दोस्तों का साथ ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर था। फिर वक्त बदला, सब अपनी अपनी दुनिया में खो गए, जो हर वक्त साथ थे वो जाने कहां जाके सो गए। अब यादों में ही सजती है वो पुरानी सी महफिल, दोस्त तो बिछड़ गए मगर दोस्ती आज भी दिल में जिंदा है। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात, थैंक यू सो मच उम्मीद उस्मान। आपने बहुत अच्छी पोस्ट की और मैं बिल्कुल इससे अग्री करता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है।

720 and you are listening Sangeet Radio, जो के है number one देसी hit music station. आप सुन रहे हैं Prime Time with Ahad, आपका और मेरा साथ है रात में 8 बजे तक, और आप सुन रहे हैं इस वक्त अरिजीत सिंह की आवाज में

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संगीत रेडियो पे प्राइम टाइम विद अहद, आपका मेरा साथ 8 बजे तक है और आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन गैप पे के क्यों है ये कम्युनिकेशन गैप हमारे दरमियान।

अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि जो बड़ी डिफिकल्ट, मुश्किल जो कॉन्वर्जेशन होती है वो कैसे शुरू की जाए, वो किस तरीके से जो है वो स्टार्ट होती है। बड़ी प्रैक्टिकल पार्ट मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ इस चीज़ को है कम्युनिकेशन का। अगर किसी से इम्पॉर्टेंट बात करनी हो तो भाई कैसे स्टार्ट करें, तो अक्सर हम स्टार्ट ही गलत कर देते हैं। जैसे कि मतलब कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जैसे कि तुम कभी मेरी बात नहीं समझते, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मतलब आप सोचें, जब कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट ही जो है वो ब्लेम से, इल्ज़ाम तराशियों से हो जाए, तो फिर सामने वाला बिल्कुल डिफेंसिव हो जाता है और बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन बात को ना इस तरह से बड़ा धीरे धीरे आप, मतलब इंस्टेड आप ये सब कहें, आप ये कह सकते हैं कि यार मुझे ना आपसे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है। तो देखें, सामने वाले की क्यूरियोसिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि यार कुछ शेयर करना चाह रहा है, तो मतलब क्या चीज़ है, क्या शेयर होगा ऐसा। या आप ये भी कह सकते हैं कि यार मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। अच्छा, ये मैं आपसे जितनी बातें कर रहा हूँ ये सबके लिए हैं, मतलब ये कोई कपल के लिए भी हो सकती है, ये दोस्तों में भी हो सकती है, ये पेरेंट्स में भी हो सकती है, ये एक टीचर स्टूडेंट में भी हो सकती है, मतलब सब में हो सकती है। बात है कम्युनिकेशन तो सभी करते हैं ना, हम सब इंसान हैं। तो स्टार्ट, इनिशिएट कैसे करना है, मतलब ये बात है। देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं हम मतलब जो भी बात है वो हमारी बात है, हम दोनों दोस्तों की बात है या हम यहाँ बीवी की बात है, तो हम इसको ना देखो यार काम, थोड़ा काम होके थोड़ा समझें इस चीज़ को, थोड़ा रिलैक्स होके और अपने माइंड को थोड़ा ठंडा रख के। तो मैं एक सिचुएशन डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। अब जब आपने ये बात बोल दी तो समझे बड़ा एक अच्छा माहौल बन जाएगा वहीं पे, कि आपने जो है ना वो स्टार्ट कम से कम लड़ाई झगड़े से नहीं किया और आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि मैं तुम्हें कहीं कुछ समझता हूँ, तभी तो मैं तुमसे शेयर करना चाह रहा हूँ कोई चीज़। बिल्कुल, आप ये भी बोल सकते हैं कि कैन वी टॉक अबाउट दिस विदाउट ब्लेमिंग ईच अदर, क्योंकि होता है ना मियाँ बीवी को पता होता है कि हम अब भी बात शुरू करते हैं वहां तो बस फिर फड्डा ही हो जाना है, कोई ना कोई बात जो है वो खराब ही हो जाएगी। तो आप पहले ही ये बात कर लें कि भाई हम एक दूसरे को के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि हम इस चीज़ को हम तरह तरीके से बात कर लें। तो आपने एक दूसरे की परमिशन भी ले ली कि हाँ भाई, बीवी भी बोल देगी हाँ ठीक है हम नहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम बात करेंगे, मैं भी सुनूंगी आपकी बात, आप भी सुनिएगा, आप भी कहिएगा अपनी बात, हम आराम से करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के बड़े आसान से तरीके हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों नहीं करते।

तो वो कहते हैं ना, बात जब दिल से करते हैं आप और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, राइट वर्ड राइट टाइम पे जो है वो आप जब करते हैं तो वो बात बड़ी असर रखती है। तो अपनी बात को अगर इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने जो वर्ड्स हैं उसका चुनाव और अपनी कॉन्वर्जेशन का स्टार्ट जो है वो बहुत हल्का धीमा ठंडा और इज्जत के साथ करें, ना कि स्टार्ट ही जो है वो इस बात से होके मुझे पता था तुमने तो ऐसा करना था वैसा करना था और ये करना था वो करना था। जब स्टार्ट ही इतना ऊपर से आएंगे तो बस फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला जो है वो सर नीचे करके आपकी बात सुनेगा? ऐसा नहीं हो सकता।

अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने अगर कोई बात अपनी करनी होती है कहीं, तो मैं ये करता हूँ कि मैं ये सामने वाले से बोलता हूँ कि यार आप कब फ्री होंगे तो हम प्रॉपरली बात कर सकें, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात जरा डिस्कस करनी थी, तो कब बात हो सकती है? अगर सामने वाले को लगता है कि नहीं अभी फौरन हो सकती है, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, तो फिर मैं बोल देता हूँ नहीं मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी लंबी बात है, तो बेहतर होगा कि हम आराम से बैठ के बात करें। तभी मैंने बात शुरू नहीं की, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ी सी ये बात जो है वो मैं कर लेता हूँ, ताकि मुझे सामने वाले की भी अवेलेबिलिटी तो कम से कम पता लगे ना भाई, कि सामने वाला है भी अवेलेबल मेरी बात सुनने के लिए, या मैंने बस अपनी बोलती शुरू कर देनी है। तो इट्स बेटर कि आप सामने वाले को इतना रिगार्ड दें, इतनी इसकी स्पेस का ख्याल रखें, उसके टाइमिंग का ख्याल रखें कि हाँ भाई आप हर वक्त हर बात हर जगह नहीं शुरू कर सकते। So the right conversation at the wrong time can still go wrong.

बात कर लेते हैं थोड़ी सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से कि क्या इस वक्त चल रहा है। जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो हमें ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमारे शोज हैं हमारे वो बड़े पॉपुलर हैं, लोग बड़ा देखते हैं, उस पर बड़े कमेंट्स कर रहे होते हैं। और बहुत सारे आजकल तो यूट्यूब पे लोग जो हैं वो क्रिटिक बन गए हैं, लोग मतलब कुछ मशहूर लोग भी बन गए हैं जो कि चैनल्स पे भी शो कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं बैठ के। कुछ लोग अपने घरों में बैठ के रिव्यू कर रहे हैं और यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे होते हैं। तो पता लग जाता है यार क्या चीज़ आजकल बड़ी पॉपुलर चल रही है, किसको लोग जो है वो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कौन सा शो इस वक्त बड़ा पॉपुलर जा रहा है। जैसे कि वो एक रियलिटी शो चल रहा है तमाशा के नाम से, वो भी लोग देखते हैं, उसके ऊपर वीडियोज़ आ रहे होते हैं, उसकी रील्स और उसकी मीम्स आ रही होती हैं, वो एक लोग जो है बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इसके अलावा जो दो ड्रामास हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, आपकी इज्जत, वो बड़ा कोई पॉपुलर, लोग उसको देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो लिखा हुआ बहुत अच्छा है। और जो दरे निजात एक ड्रामा है ARY डिजिटल पे आ रहा है, वो भी उसकी भी राइटर उमैरा अहमद हैं जो कि आपकी इज्जत की दोनों राइटर्स जो हैं, मतलब एक ही राइटर हैं दोनों ड्रामों की, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और लोगों की जो अप्रिसिएशन की जो पोस्ट होती हैं वो हर जगह नज़र आ रही होती हैं और हर कोई तारीफ कर रहा होता है। तो ये ऐसे शोज़ हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि बड़े रिकमेंड किए जा रहे हैं लोगों को देखने के लिए। तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो नहीं देख रहे और आप चाहते हैं कोई अच्छा कॉन्टेंट कंज्यूम करना चाहते हैं जो कि मीनिंगफुल है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई सर पैर नहीं है उसका, बस ऐवें ही एक बस ड्रामा बन गया है। मीनिंगफुल की जब बात होती है तो वाकई उसके अंदर कुछ दम होना चाहिए, उसके स्क्रिप्ट में, उसके कंटेंट में, उसकी लिखाई में, उसकी जो डायरेक्शन है उसमें, परफॉर्मर्स जो हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा डिलीवर कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जब हर तरफ से अच्छी होती हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट सामने निकल के आता है। इसके अलावा हमने अभी देखा कि ग्रीन TV पे एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसको मुझे देख के लेजेंड ऑफ मौला जट की याद आ गई। मैंने वो देखा, वहाज अली और माहिरा खान उसके अंदर हैं, लीड कर रहे हैं। मिट्टी दे बावे के नाम से ये ड्रामा है जिसका जब मैंने ट्रेलर देखा तो आई वाज लाइक सीरियसली ये इतना मेगा प्रोडक्शन है इसकी और इसको देख के लग रहा है कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि जो उसके शॉट्स हैं, सिनेमेटोग्राफी है वो इतनी अप टू द मार्क और टॉप नॉच लग रही है कि उसका बड़ा मैं उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि वो कब आएगा और जो है वो कब वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी कास्ट बहुत बड़ी है और लीडिंग कास्ट तो ऑब्वियसली वहाज और माहिरा हैं, लेकिन इसके अलावा जो कास्ट है वो भी बहुत अच्छी है और उसमें डिफरेंट एराज भी दिखाए गए हैं, 80s, 90s और ये सारा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसकी स्टोरी, उसके जो जितने भी मैंने सीक्वेंस देखे, जो एक्शन सीक्वेंस हैं, वो वाकई किसी मूवी से कम नहीं लग रहे। तो अगर आपने उसका ट्रेलर नहीं देखा तो ज़रा जाके उसका ट्रेलर देखिए तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी, उसकी प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल 7:32 इस वक्त हो चुके हैं, जाएंगे ब्रेक पे और मगरिब का भी टाइम है, एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे आपसे और बहुत सी बातें। तो आज हो रही है कम्युनिकेशन गैप पे बात, तो किस तरह ख़त्म कर रहे हैं आप लोग अपने कम्युनिकेशन गैप को ज़रूर बताइए मैसेज करके। मैसेज कैसे करेंगे, 2819335555 इज़ आर नंबर, यहाँ पे आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन गैप को जो है वो ख़त्म करते हैं और वो क्या टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर चल के हम अपने कम्युनिकेशन गैप को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर सकते हैं। सुनते रहिए संगीत रेडियो जो कि है नंबर 1 देसी हिट म्यूजिक स्टेशन।

0: अल्लाह इस दावत कामिल और ता कयामत कायम होने वाली नमाज के रब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है और कयामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता।
1: दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय गुलाम बम्बे वाला ऑफ जीनत फाउंडेशन।

0: सुने, मैं बहुत परेशान हूँ। हिरा इतनी बड़ी हो रही है लेकिन हमें कोई मिल ही नहीं रहा जो उसे सही तलफ्फुज़ और तजवीद से कुरान पाक पढ़ा दे। और फिर हमारे पास पिक एंड ड्रॉप का भी तो मसला है।
1: बेगम, तो परेशान होने की क्या बात है, हम हाफिज मुदस्सिर से ऑनलाइन कुरान की तालीम दिलवाएंगे।
0: ऑनलाइन?
1: हाँ ऑनलाइन, मेरे भतीजे अली ने उन्हीं से कुरान पढ़ा है। हाफिज मुदस्सिर अली के स्केड्यूल के मुताबिक क्लासेस रखते हैं और हाफिज मुदस्सिर को हर रमजान शरीफ में तरावी पढ़ाने की सआदत हासिल है।
0: अच्छा, तो उनसे कैसे कॉन्टेक्ट करें?
1: और उन्हें कॉल करते हैं
2: व्हाट्सएप पे 92300-391-4430,
0: 92300-391-4430.
3: Cash Gaddy Realty, a realtor you can trust. Someone that works directly with you to help you find the house that's

0: Long term care. Please call Nuruddin Hamdani at 832-776-3642. 832-776-3642. Listen to their segment on Thursday at 4:30 PM on Sangeet Radio 95.1 FM. Salva Financial, helping families create wealth. जिसने एक जिंदगी बचाई गोया उसने इंसानियत बचाई. SIUT नॉर्थ अमेरिका इज सेलिब्रेटिंग 26 इयर्स ऑफ कंपैशन एंड हीलिंग ऑन सैटरडे 10th अक्टूबर 2026 एट 6 PM. एक ऐसा शानदार इवेंट जहां पर आपकी डोनेशन किसी की जिंदगी बचा सकती है. गेस्ट प्रमोशन बाय फैसल कबाडिया.
1: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल कबाडिया एंड आई विल बी इन ह्यूस्टन ऑन अक्टूबर 10 इन सपोर्ट ऑफ SIUT नॉर्थ अमेरिका. एवरी डे SIUT सेव्स लाइव्स बाय प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट. आइए मिलके SIUT का साथ. I'll see you inshallah on October 10th.
0: This event is happening at Hyatt Regency, Houston West, 13210, KT Freeway, Houston, Texas, 77079. For more information and donation, visit siut.org or call 713-777-1214. 713-777-1214.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संगीत रेडियो पे प्राइम टाइम विद आहद। आपका मेरा साथ 8 बजे तक है और बस सिर्फ प्रोग्राम में बस 10 से 12 मिनट जो है वो बाकी रह गए हैं और आज का दिन भी, आज का टाइम भी जो है वो पर लगा के जो है वो उड़ चुका है, निकल चुका है और वक्त का वाकई में पता नहीं लगता, क्योंकि जो संगीत रेडियो के साथ और आप लोगों के जो मैसेजेस, आप लोगों का जो फीडबैक या आप लोगों के की जो प्लेलिस्ट है उसका जो एक कहते हैं ना कॉम्बिनेशन जो है वो इतना अच्छा होता है कि 2 घंटे मुझे नहीं पता लगते कि कब जो है वो वक्त स्टार्ट होता है और कब निकल जाता है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन गैप की और मुझे एक बड़ा अच्छा भी मैसेज आया। सैयदा ताहिरा, ये इन्होंने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को जो है वो अब अप्लाई करना शुरू कर दी है, जहां मुझे लगे कि कोई अपनी बात बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं उससे ये डायरेक्टली पूछ लेती हूं कि तुम चाहते हो या चाहती हो कि मैं सिर्फ सुनूं या तुम एडवाइस भी चाहते हो। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि अब सामने वाले को एक चॉइस मिल जाती है इस तरीके से। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप कभी कभी आप ये कोई सब बोल रहा होता है तो आप उससे मशवरा पूछ लेते हैं कि मतलब मैं मतलब एडवाइस भी तुम्हें चाहिए मुझसे, तो ठीक है मैं तुम्हारी पूरी बात तो सुन ली है, तो सिर्फ तुमने बताना था या तुम्हें कोई एडवाइस भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है और आपको जो है वो पता लग जाता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है। अली दुरानी का मैसेज है, वो कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग का गोल सिर्फ चुप रहना नहीं बल्कि दूसरे इंसान को सुनना और उसको अंडरस्टूड फील करवाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल यही बात है कि सामने वाले को ये चीज़ का एक फीलर आपसे मिल जाए, एक कि आप सुन रहे हैं खामोशी से उसकी बात बग़ैर जज किए और बग़ैर इंटरप्ट किए उसको। तो वैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मतलब हम अवॉइड करते हैं कॉन्वर्जेशन अपनी, अगर जैसे कि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का डर होता है कि यार हम बोलेंगे तो पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, पता नहीं वो नाराज़ ना हो जाए, पता नहीं बात कहीं आर्ग्यूमेंट में ना कन्वर्ट हो जाए, पता नहीं मुझे कहीं रिजेक्ट ही ना कर दिया जाए, तो इसलिए हम मतलब साइलेंस चूज कर लेते हैं बजाय कि बात करने के। लेकिन साइलेंस जो है ना वो हमेशा पीस का काम नहीं प्ले करता। अक्सर औकात यही देखा गया है कि जो साइलेंस है, जो खामोशी है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ग्रो करती जाती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता करके। देखिए, आप अगर बहुत कुछ अजीब सी सिचुएशन है और आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको लग रहा है यार रहने ही दो, छोड़ो, लेकिन आपका दिल तब भी नहीं मानता, आपका आपको बात करना भी चाहते हैं लेकिन आप कहते हैं यार कैसे बोलूं क्या करूं, तो आप उस बात को यूं स्टार्ट कर सकते हैं कि मतलब मैं जो है ना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ना मैं ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ अहम है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका मैसेज चला जाएगा। आपने एटलीस्ट इनिशिएट ले लिया, आपने स्टार्ट कर दिया, वही वाली बात है, बस आपने पैर रख दिया तो बस अब सफ़र जो है ना वो चल पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बात वाकई ऐसी है, आपको लगता है कि कहीं कोई गर्मा गर्मी हो सकती है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई डोंट वांट दिस टू बिकम एन आर्ग्यूमेंट, तो आई जस्ट वांट अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हाँ, तो ये भी बात बड़ी अच्छी है, तो टेम्परेचर आपका जो है ना वो लो कर सकती है ये बात।

जी आप भी फिक्र को गोली मारें, टेंशन को गोली मारें और कम्युनिकेशन जो है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें और कम्युनिकेशन गैप इसी तरीके से खत्म होगा, हौले हौले करके ही खत्म होगा।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संगीत रेडियो पे प्राइम टाइम विद आहद। सो ह्यूस्टन वालों, अगर आज की शाम आप किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं तो शायद आज उसे स्टार्ट करने का दिन है। कॉल करना है तो कॉल करें, मैसेज करना है तो मैसेज करें, और अगर बात सेंसिटिव है तो कामली फेस टू फेस जो है वो बात करें, सब्र से, इत्मीनान से, क्योंकि कम्युनिकेशन का गोल जीतना नहीं होता, द गोल इज टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। सो आप सुन रहे थे प्राइम टाइम विद अहद, मैं हूं अहद, और आपके साथ गुजारी हुई ये शाम मेरे लिए हमेशा स्पेशल है, क्योंकि आज हमने बात की बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन की, तो हम भी बिल्कुल कोशिश कर ही रहे हैं सब मिलके। आई एम श्योर आज का शो सुनने के बाद जो है वो कुछ ना कुछ तो बात समझ में आई होगी, मेरे भी समझ में आई और आपके भी समझ में आई होगी कि जिन लोगों से रابطہ किए बहुत टाइम गुजर गया है, गैप आ गया है, तो ख़त्म कर दीजिए उस गैप को, कम्युनिकेशन कीजिए, बात कीजिए और गलत फहमियों को कीजिए दूर। स्टे कनेक्टेड, स्टे काइंड, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कीप द कॉन्वर्सेशन अलाइव। गुड नाइट ह्यूस्टन, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट शो में, यानी के कल, राइट हियर ऑन संगीत रेडियो। टेक केयर, बाय बाय।

0: Robots in Geek City. Get ready for more of your favorite music after this short commercial break.
1: रूबी बेटा, तुम्हारी बर्थडे आ रही है, तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए?
2: अब्बू, अब आपने पूछ ही लिया है, तो बस दो गिफ्ट चाहिए।
1: वो क्या?
2: एक तो आपकी दुआएं, दूसरा हॉट पैड्स का केक।
1: लगता है तुम सारे दिन संगीत ही सुनती हो।
2: अब्बू मैं क्या, सारा शहर ही संगीत को सुनता है। आपको याद है अम्मी पता नहीं कौन से सुपरमार्केट से केक उठा रही थी?
1: हाँ मुझे याद है।
2: हॉट पैड्स का केक तो बचता नहीं है, सब लोग खा जाते हैं।
1: भाई दुआएं तो मैं तुम्हें सुबह शाम देता रहता हूँ, रह गया हार्टब्रेड का, तो हार्टब्रेड का केक तुम्हारी बर्थडे पे आ जाएगा।
2: आपको हार्टब्रेड का पता भी मालूम है?
1: बेटा आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं गूगल कर लूंगा, फिर भी तुम बता दो।
2: विजिट हार्टब्रेड्स एट 5700 हिलक्राफ्ट एवेन्यू और houstonhotbreads.com। हार्टब्रेड्स, योर देसी बेकरी।
3: शाही दरबार ग्रिल एंड मोर, ट्राई सम ऑफ देयर बेस्ट सेलर्स फॉर संगीत रेडियो लिसनर्स। चूज चिकन टिक्का लेग, चिकन बोटी, मलाई बोटी, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, और चूज बटर चिकन, गोट पाया, बीफ नहानी। Combo packs are still available at Shahi Darbar Grill and More. Get your favorite grill or curry items for a limited time at special price at Shahi Darbar Grill and More. Located for you guys off the corner of University Boulevard in Telfair. Call today to place your orders in advance at 832-532-0532.
4: Pakistani Barbecue Tonight ki pehli franchise ab Houston mein, jo banayega aapke tamam important events ko yaadgar. Shadi ho, daawat ya birthdays, इवेंट्स हो या गेट टुगेदर, जायकेदार पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मजा और खूबसूरत प्रेजेंटेशन और बारबेक्यू टुनाइट की एक्सपर्टीज ला रही हैं रिवायती पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन जायका आपके पास। यानी अब हर खाना मजेदार, हर दावत यादगार। बारबेक्यू टुनाइट 3465942109 और ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम barbecuetonightusa.com। बारबेक्यू टुनाइट केटरिंग 3465942109।
5: कैश गैरी रियल्टी, ए रियल्टर यू कैन ट्रस्ट, समवन दैट वर्क्स डायरेक्टली विद यू टू हेल्प यू फाइंड द हाउस दैट्स राइट फॉर यू। फॉर हिज लोकल लिस्टिंग कॉल कैश विद 832-929-2200। रियल्टर कैश गैरी 832-929-2200।
6: दिस इज गिल्बर्ट एंड्रू गार्सिया, लिसन टू माय radio show, A Tip from Gilbert. Talk, inspiration, and prayer every Monday from 11 a.m. till noon on Sen Geek Radio 95.1 FM 1460 AM. Call in at 832-570-8075 and follow me on social media. See you then.
7: जिंदगी में आपने बहुत कमाया, बहुत काम कर लिया, जमा भी कर लिया, बैंक में भी रखवा दिया। बैंक सिर्फ आपको 1-1.5% इंटरेस्ट देता है। जरा गौर से सुनिए, तारा कैपिटल में बेहतरीन मुनाफे के लिए इन्वेस्ट कीजिए। तारा कैपिटल एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि BSE मल्टी फैमिली प्रॉपर्टीज को रिपोजेस करता है। आपने जिंदगी में बहुत काम कर लिया, अब अपने सरमाए को काम करने दीजिए और मुनाफा कमाइए। इन्वेस्ट इन रियल स्टेट विद रेपुटेबल मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी मिस्टर पॉल अग्रवाल। कॉल हिम 281-827-8199 और विजिट TaraCapital.com.
8: You're listening to Sun Geek Radio, only on 95.1 FM.

0: सुने, मैं बहुत परेशान हूँ। हिरा इतनी बड़ी हो रही है लेकिन हमें कोई मिल ही नहीं रहा जो उसे सही तलफ्फुज़ और तजवीद से कुरान पाक पढ़ा दे, और फिर हमारे पास पिक एंड ड्रॉप का भी तो मसला है।
1: बेगम, तो परेशान होने की क्या बात है, हम हाफिज मुदस्सिर से ऑनलाइन कुरान की तालीम दिलवाएंगे।
0: ऑनलाइन?
1: हाँ ऑनलाइन, मेरे भतीजे अली ने उन्हीं से कुरान पढ़ा है। हाफिज मुदस्सिर अली के स्केड्यूल के मुताबिक क्लासेस रखते हैं और हाफिज मुदस्सिर को हर रमजान शरीफ में तरावी पढ़ाने की सआदत हासिल है।
0: अच्छा, तो उनसे कैसे कॉन्टेक्ट करें?
1: और उन्हें कॉल करते हैं
2: व्हाट्सएप पे 9230039144309230039144
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
3: दिस इज गिलबर्ट एंड्रू गार्सिया। लिसन टू माय रेडियो शो ए टिप फ्रॉम गिलबर्ट, टॉक इंस्पिरेशन एंड प्रेयर एवरी मंडे फ्रॉम 11 AM टिल नून ऑन सेन गीक रेडियो 95.1 FM 1460 AM। कॉल इन एट 832-570-8075 एंड फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। सी यू देन।
4: Royal Travel brings you Fall 2026 Umrah Package starting from November 28th through November 29th. Umrah packages starting from $2,995 includes round trip airfare from Houston to Saudi Arabia, 4-night stay in Medina and 4-night stay in Mecca in 5-star hotel, visa services for all U.S. passports, ziyarat in Medina and Mecca, transportation in trains, rides from Mecca to Medina, 1 free night stay over in Dubai. For booking and more information, please call Royal Travel at 281-498-1800 or email umrah@royaltraveltexas.com.
5: Cash Gaddy Realty, a realtor you can trust. Someone that works directly with you to help you find the house that's right for you. For his local listing, call Cash with 832-929-2200. Realtor Cash Gaddy, 832-929-2200.
6: Dil mein sawal, dimag mein tension, ya phir business, family, ya paison ko lekar confusion hai? To ye announcement aapke liye. Kabhi-kabhi bas dil karta hai ki koi aisa ho jo aapki baat samjhe aur aapko ek fresh point of view de. Pandit Rudradev, Indian astrologer and psychic in Houston, offers hand reading, love reading, horoscope reading and future reading. आप अपने लव, मैरिज, फैमिली, बिजनेस, मनी, प्रॉपर्टी और स्पिरिचुअल कंसर्न्स के बारे में गाइडेंस लेना चाहते हैं, पंडित रुद्रदेव से बात कीजिए। अवेलेबल 7 days a week, मंडे थ्रू संडे, 8 AM टू 10 PM। जब सवाल दिल में हो तो गाइडेंस के लिए एक कॉल कीजिए 4696639777। ह्यूस्टन में पंडित रुद्रदेव, इंडियन एस्ट्रोलॉजर एंड साइकिक। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल एट 4696639777। Pandit Rudradev.
7: Shahi Darbar Grill and More. Try some of their best sellers. For Sangeet Radio listeners, choose chicken tikka leg, chicken borti, malai borti, chicken seekh kebab, beef seekh kebab, or choose butter chicken, goat paya, beef nahani. Combo packs are still available at Shahi Darbar Grill and More. Get your favorite grill or curry items for a limited time at special price at Shahi Darbar Grill and More. Located for you guys off the corner of University Boulevard in Telfair. Call today to place your orders in advance at 832-532-0532.
8: You're listening to Sangeet Radio, only on 95.1 FM.

Studio, Season 15.

बरा।

0: ऐ अहले मक्का, जिस तरह हमने फिरौन के पास मूसा को पैगंबर बनाकर भेजा था, उसी तरह तुम्हारे पास भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भेजे हैं जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे। सो फिरौन ने हमारे पैगंबर का कहा ना माना तो हमने उसको बड़े बवाल में पकड़ लिया।
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا।
0: अगर तुम भी इन पैगंबर को न मानोगे तो उस दिन से क्यों कर बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा।
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا।
0: और जिससे आसमान फट जाएगा ये उसका वादा पूरा होकर रहेगा।

0: सबीला।
1: ये कुरान तो नसीहत है सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार कर ले।
0: इन रब्बक यालम अन्नक तकूम अदना मिन थुलुसय लैल व निस्फहु व थुलुसहु

0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: या अय्युहल मुद्दत्तिर,
0: ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जो कपड़ा लपेटे पड़े हो,
1: कुम फअन्दिर,
0: उठो और हिदायत कर दो,
1: वरब्बका फकब्बिर,
0: और अपने परवरदिगार की बड़ाई करो,
1: वथियाबका फतहिर,
0: और अपने कपड़ों को पाक रखो,
1: والرجز فهجر,
0: और नापाकी से दूर रहो,
1: ولا تمنن تستكثر,
0: और इस नियत से एहसान न करो कि उससे ज्यादा के तालिब हो,
1: ولربك فاصبر,
0: और अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो,
1: فإذا نقر في الناقور,
0: जब सूर फूंका जाएगा,
1: فذلك يومئذ يوم عسير,
0: वो दिन मुश्किल का दिन होगा,
1: على الكافرين غير يسير,
0: यानी काफिरों पर आसान न होगा,
1: ذرني ومن خلقت وحيدا,
0: हमें उस शख्स से समझ लेने दो जिसको हमने अकेला पैदा किया,
1: وجعلت له مالا ممدودا,
0: और माले कसीर दिया,
1: वबनीना शुहूदा,
0: और हर वक्त उसके पास हाजिर रहने वाले बेटे दिए,
1: वमहत्तु लहू तम्हीदा,
0: और हर तरह के सामान में वुसअत दी,
1: थुम्मा यतमाउ अन अजीद,
0: अभी ख्वाहिश रखता है कि और ज्यादा दें,
1: कल्ला इन كان لآياتنا عنيدا,
0: ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये हमारी आयतों का दुश्मन रहा है,
1: سأرهقه صعودا,
0: हम उसे सऊद पर चढ़ाएंगे,
1: إنه فكر وقدر,
0: उसने फिक्र किया और तजवीज की,
1: فقتل كيف قدر,
0: ये मारा जाए उसने कैसी तजवीज की,
1: ثم قتل كيف قدر,
0: फिर ये मारा जाए उसने कैसी तजवीज की,
1: ثم نظر,
0: फिर तामुल किया,
1: ثم عبس وبصر,
0: फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ लिया,
1: ثم أدبر واستكبر,
0: फिर पुश्त फेर कर चला और कबूल हक से गुरूर किया,
1: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر,
0: फिर कहने लगा ये तो जादू है जो अगलों से मुत्तसिल होता आया है,
1: إن هذا إلا قول البشر,
0: फिर बोला ये खुदा का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है,
1: سأصليه سقر,
0: हम अन करीब उसको सकर में दाखिल करेंगे,
1: वमा अदराक मा सकर,
0: और तुम क्या समझे कि सकर क्या है,
1: ला तुबकी वला तदर,
0: वो आग है कि न बाकी रखेगी और न छोड़ेगी,
1: लवाहतु लिल्बशर,
0: और बदन को झुलस कर स्याह कर देगी,
1: अलैहा तिस्अता अशर,
0: उस पर 19 दारोगा हैं,

0: और याद भी तभी रखेंगे जब खुदा चाहे, वही डरने के लायक और बख्शिश का मालिक। बेशक नेकुकार नेमतों की बहिश्त में होंगे। और बदकिरदार दोजख में। यानी जजा के दिन उसमें दाखिल होंगे।
1: वमा हुम अन्हा बिगाइबीन
0: और उससे छुप नहीं सकेंगे।
1: वमा अद्राका मा यौमुद्दीन
0: और तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है।
1: थुम्मा मा अद्राका मा यौमुद्दीन
0: फिर तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है।
1: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل للمطففین
0: नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है।
1: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون
0: जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें।
1: واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون
0: और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें।

0: क्या ये लोग नहीं जानते कि उठाए भी जाएंगे
1: लियौमिन अज़ीम
0: यानी एक बड़े सख्त दिन में
1: यौम यकूमुन नास लिरब्बिल आलमीन
0: जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे
1: कल्ला इन्न किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन
0: सुन रखो कि बदकारों के आमाल सिज्जीन में हैं
1: वमा अदराका मा सिज्जीन
0: और तुम क्या जानते हो कि सिज्जीन क्या चीज है
1: किताबुन मरकूम
0: एक दफ्तर है लिखा हुआ
1: वैलुन यौमइज़िन लिल्मुकद्दिबीन
0: उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है
1: अल्लज़ीना युकद्दिबूना बियौमिद्दीन
0: यानी जो इंसाफ के दिन को झुटलाते हैं
1: वमा युकद्दिबु बिही इल्ला कुल्लु मुतदिन असीम
0: और उसको झुटलाता वही है जो हद से निकल जाने वाला गुनाहगार है
1: इदा तुतला अलैहि आयातुना قال اساطير الاولين
0: जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले लोगों के अफसाने हैं
1: कल्ला बल रान अला कुलूबहिम मा कानू यक्सबून
0: देखो ये जो आमाल बद करते हैं उनका उनके दिलों पर जंग बैठ गया है
1: कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून
0: बेशक ये लोग उस रोज अपने परवरदिगार के दीदार से ओट में होंगे
1: थुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम
0: फिर दोजख में जा दाखिल होंगे
1: थुम्मा युकालु हाज़ा अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकद्दिबून
0: फिर उनसे कहा जाएगा ये वही चीज है जिसको तुम झुटलाते थे
1: कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी इल्लियीन
0: ये भी सुन रखो कि नेकुकारों के आमाल इल्लियीन में हैं
1: वमा अदराक मा इल्लियून
0: और तुमको क्या मालूम कि इल्लियीन क्या चीज है
1: किताबुन मरकूम
0: एक दफ्तर है लिखा हुआ
1: यशहदुहुल मुकर्रबून
0: जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर रहते हैं
1: इन्नल अबरार लफी नईम
0: बेशक नेक लोग चैन में होंगे
1: अलल अराइक यंजुरून
0: तख्तों पर बैठे हुए नजारे करेंगे
1: तारिफ फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम
0: तुम उनके चेहरों ही से राहत की ताजगी मालूम कर लोगे
1: युस्कौन मिन रहीकिम मख्तूम
0: उनको शराब खालिस सरब महर पिलाई जाएगी
1: खितामुहु मिस्कुन वफी ذلك فليتنافس المتنافسون
0: जिसकी मोहर मुश्क की होगी तो नेमतों के शायकीन को चाहिए कि उसी से रगबत करें
1: ومزاجه من تسنيم
0: और उसमें तस्नीम के पानी की आमिजिश होगी
1: عينا يشرب بها المقربون
0: वो एक चश्मा है जिसमें से खुदा के मुकर्रब पिएंगे
1: इन الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون
0: जो गुनाहगार यानी कुफार हैं वो दुनिया में मोमिनों से हंसी किया करते थे
1: وإذا مروا بهم يتغامزون
0: और जब उनके पास से गुजरते तो हिकारत से इशारे करते
1: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
0: और जब अपने घर को लौटते तो इतराते हुए लौटते
1: وإذا رأوا

0: Sangeet City, get ready for more of your favorite music after this short commercial break.
1: पाकिस्तानी बारबेक्यू टुनाइट की पहली फ्रेंचाइज अब ह्यूस्टन में। पाकिस्तानी बारबेक्यू और खानों का अपना वही जायका लिए तो फिर देर कैसी। यहाँ हर रोज आप सबकी पसंद का मेन्यू है। फैमिली के साथ पाकिस्तान के असल खानों का मजा उठाइए। और हाँ, अगर इन्हीं खानों का मजा अपने घर पर उठाना चाहते हैं तो अभी कॉल या हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें। कॉल नाउ 3465942097 3465942109 और ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम barbecuetonightusa.com।
2: जब भी ये तलबिया सुनता हूँ दिल चाहता है उड़कर मदीने चला जाऊँ।
3: यकीनन जो सुकून वहाँ मिलता है दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता।
2: अच्छा पता करता हूँ किसी ट्रैवल एजेंट का।
3: ये मसला तो मैं आपका हल कर देती हूँ। समीना बाजी याद है ना आपको?
2: हाँ हाँ, वो कंजूस मक्खी चूस।
3: अरे कंजूस नहीं, समझदार है और इसीलिए वो पिछले कई सालों से कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल से टिकट्स लेती हैं। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल सऊदी मिनिस्ट्री से मंजूर शुदा है और इस फील्ड में 1998 से है। उनसे बढ़कर काबिले एतमाद और प्रोफेशनल ट्रैवल एजेंट पूरे ह्यूस्टन में तो क्या पूरे अमेरिका में नहीं है।
2: मैं अभी कॉल करता हूँ कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल को। कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल 713-334-8888 or visit continentstravel.com.
4: Been injured in an accident? Don't navigate the legal system alone. You need someone in your corner who fights for what you deserve. Call Zerwa B. Sheikh at Sheikh Injury Law. Serving Houston, Harris County and surrounding areas with dedicated personal representation. Get the trusted advocacy you need. Call 713-955-8840. That's 713-955-8840. Or email info@sheikhinjurylaw.com. Sheikh Injury Law. Your recovery is our priority.
5: Salva Financial, helping family create wealth. They deal with providing you with life insurance, health insurance, long-term care. Please call Nuruddin Hamdani at 832-776-3642. 832-776-3642. Listen to their segment on Thursday at 4:30 p.m. on Sangeet Radio 95.1 FM. Salva Financial, helping families create wealth.
6: Is your child sick? Don't wait. At Gentle Pediatrics, we offer same-day sick appointments so your child can start feeling better today. We provide annual checkups, sports physicals, vaccinations, ADHD, autism, asthma care, sick visits, and much more. Our pediatric clinic has female and male providers. And guess what? You can reach our pediatric provider 24/7, 365 days a year. We are conveniently located in Telfair, Sugarland, and we accept most insurance plans. Call Gentle Pediatrics at 832-222-5437. That's 832-ABCKIDS. Join the thousands of families who trust Gentle Pediatrics. We are a five-star pediatric clinic with over 1,000 reviews on Google. Gentle Pediatrics, where your child's health comes first.

आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई।

भूली हुई मंजिल भी याद आती है राही को, और भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। इसकी जरूरत है मुसलमान को फिर उसका मकसद याद दिलाया जाए। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि हमारे यहाँ टाटे और बिरले नहीं थे तो हमारे पास उसके भी बाप वजूद में आ जाए, इसलिए तो नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि जागीरदारों की जागीरदारियां महफूज हो जाए, पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनाया गया था। और ये कि नमाजें और मस्जिदें तामीर हो जाए, मस्जिदें तो अमरीका में तामीर हो रही है आलीशान से आलीशान, इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। आज भी मुसलमान, मैं माजत से अर्ज कर रहा हूं मौलाना से, आज भी भारतीय मुसलमान की एवरेज नमाजी होने के एतबार से पाकिस्तानी मुसलमान से कहीं बेहतर। यहां तो जिसके पास दो पैसे हो गए उसने सबसे पहले बुर्का उतार के फेंक दिया। मालूम अच्छी तरह समझ लीजिए, ये चीजें तो वहां ज्यादा है यहां की निस्बत। वो निजाम अगले इज्तिमाई, वो जिसमें हुर्रियत हो, जिसमें आम आदमी भी खलीफे वक्त पर टोक सके, ये कुर्ता कैसे बन गया? एक खातून भी खड़ी होकर दामन पकड़ ले, उमर तुम्हें क्या हक है कि हमारे महल के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो, जबकि अल्लाह ने नहीं लगाई। अल्लाह कुरान में तिंतारा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, ढेरों सोना दे दे कोई शख्स अपनी बीवी को महल के अंदर, तलाक देते हो तो उसमें से कुछ नहीं ले सकता, आप कौन होते हमारे हक के ऊपर पाबंदी लगाने वाले? और उमर ने कहा, आज एक बुढ़िया ने अब उमर को दीन सिखाया, ऑर्डिनेंस वापस। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला जो फातह ईरान थे, वो गवर्नर ऐसे नहीं बन रहे थे रेबड़ियां बटी हो और गवर्नरी मिल गई हो, वो तो खुद फातह थे ईरान के, इसलिए गवर्नर थे। सिर्फ एक पर्चा पहुंचा है बारगाह खिलाफत में हजरत उमर फारूक के पास, इंफॉर्मेशन आई साद ने अपने घर के बाहर डेवढ़ी बना ली है और एक दरबान खड़ा कर दिया, हजरत बिलाल को भेजा है रुका देकर। और ये हुक्म था कि बिलाल पहले तो जाते ही देवड़ी में आग लगा देना, फिर ये रुका देना मेरा। और रुके में लिखा हुआ था, साद लोगों को उनकी मां उन्हें आजाद करना था, तुमने उन्हें अपना गुलाम कब से बना लिया है? ये दरबान खड़े कर दिया अपने आगे। वो हुर्रियत, वो मसावात कि जा रहा हो खलीफा वक्त और चार्ज लेने जा रहा है बैतुल मक़दिस का, कोई जाती इलाज के लिए नहीं जा रहा, शहरों से याद के लिए नहीं जा रहा, चार्ज लेने के लिए बिल्कुल सरकारी विजिट है, ऑफिशियल विजिट है, स्टेट विजिट है। और हाल क्या है, 700 मील का फासला तय करना और एक रूट नहीं, कोई एंटूरेज नहीं, कोई खदम व हशम नहीं, कोई जम्बो जेट भरे हुए नहीं, कुछ नहीं, एक ऊंटनी एक खादिम। उस एक ऊंटनी पर चूंकि रास्ते का राशन भी है, ज्यादा दो आदमी नहीं बैठ सकते, एक बैठ सकता, एक मंजिल खलीफा वक्त बैठा हुआ है ऊपर और खादिम नुकेल पकड़कर चल रहा है, अगली मंजिल खादिम ऊपर बैठा है और खलीफा वक्त उमर अब्दुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, और वो आगे आगे नुकेल पकड़कर चल रहा है। ये निजाम चाहिए आज नौ इंसानी, इसके इंतजार में, इसकी तलाश में नौ इंसानी ने कितने तजर्बे कर लिए, कैसी छलांगें लगाई, मुलूकियत खत्म की, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जमहूरियत आई नाम निहाल, लेकिन वो सरमायादाराना निजाम बनकर आगे से बढ़कर लानत बन गई। पहले जागीरदार मुसल्लत था, अब सरमायादार और कारखानेदार मुसल्लत हो गया। उससे निकलने के लिए जोर लगाया, कम्युनिज्म की तरफ गए, छलांग लगाई, अब एक पार्टी डिक्टेटर बनकर बैठ गई। इंसान रुस्त यक बनता उस्ताद दर बंदे जिगर, एक चीज से गुलामी से निजात पाता है, दूसरी में फंस जाता है। और क्यों? कि वो निजाम अदल इज्तिमाई जो मोहम्मद अरबी को देकर भेजा गया था, उसके कस्टोडियंस सोए हुए, उसके कस्टोडियंस को अंदाजा ही नहीं। ये नुस्खा तो हमारे पास था, हमें अमल करना था और दुनिया के सामने पेश करना था। पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था कि हम उसका एक नमूना दुनिया के सामने पेश करेंगे। कायदे आजम ने फरमाया था कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत में एक नमूना कायम करके दिखाए। कहां है वो? भटक गए, सो गए। बहरहाल अब भी वक्त है, जब तक सांस तक

0: प्रिपेयर करते हैं और उनको USCIS ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं।
1: योर ड्रीम आवर मिशन। कॉल लॉ ऑफिसेज ऑफ ज़ैनब के रिज़वी एट 713-297-9131 713-297-9131 और विजिट zkrlaw.com।
2: अपना घर अपनी जन्नत, फास्ट अप्रूवल्स, बेस्ट डील्स, अपना परफेक्ट होम आज ही सिक्योर करें विद लिबर्टी होम मॉर्गेज, योर ट्रस्टेड इंडिपेंडेंट ब्रोकर। चाहे आप फर्स्ट टाइम बायर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वेटरन हो, इन्वेस्टर हो या क्रेडिट थोड़ा लो हो, लिबर्टी होम मॉर्गेज आपके लिए बेस्ट मॉर्गेज ऑप्शंस कंपेयर करता है। ऑप्शंस इंक्लूड नो इनकम वेरिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट, PNL, कन्वेंशनल, जंबो, रीफाइनेंस, कैश आउट, HELOC और पोर्टफोलियो लोन्स भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल। होम लोन्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन लिबर्टी होम मॉर्गेज प्रोसेस को सिंपल और क्लियर बनाता है। यू कैन ऑल्सो रीफाइनेंस विद अ 2-to-1 रेट बाय डाउन। कॉल या टेक्स्ट करें असलम मंसूर को 713-955-4685, दैट इज 713-955-4685, और अप्लाई ऑनलाइन एट libertyhomemortgage.com। लिबर्टी होम मॉर्गेज, NMLS 321164, इक्वल हाउसिंग लेंडर। ऑल लोन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, अप्रूवल, टर्म्स एंड कंडीशंस।
3: जिंदगी एक दुकान खिलौनों की, वक्त एक बिगड़ा हुआ सा बच्चा है। बात जब घर की हो, बिजनेस की हो या सेहत की हो, मैं बहुत प्रोटेक्टेड फील करता हूँ हुमैरा जुमानी इंश्योरेंस के साथ। हुमैरा जुमानी इंश्योरेंस, रिलायबल, एफिशिएंट एंड एक्सेलेंट रेट्स। जब भी किसी को नसीहत करनी हो तो अल्फाज और अंदाज नरम अपनाना चाहिए। मेरा मकसद था दस्तक देना, दरवाजा खोलना आपका काम है।
4: To get yourself protected today, visit sonatainc.com or call 972-838-0313, 972-838-0313.
3: Humaira Jumani Insurance.

0: में धूप जैसे
1: जैसे भूख में आगाज,
0: जैसे भूख में वाह,
1: जैसे भूख में आगाज।
0: वाह क्या एंगल दिया है
1: आप। जाके देखें अगर आप नए आए हैं इस सिटी में, बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो पूछ रहे होते हैं भाई बताए ना यहाँ कोई अच्छी जगह खाने की।
0: बिल्कुल
1: कोई अच्छी जगह नहीं है, एक ही जगह है अच्छी खाने की,
0: बेहतरीन है
1: ऐसी कि अगर भूख लग गई है और वो जगह आपके सामने आ गई है
0: खाए नहीं रुकेंगे आप,
1: तड़प जाएंगे। मैं बता रहा हूँ
0: जाएंगे मचल जाएंगे।
1: अल्लाह एक पेट है और आगाज इतना बड़ा है।
0: और आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया आगाज की तरफ से, शौकत भाई की तरफ से।
2: Hello Houston, I am Shaukat Maredia from Aga's Restaurant and Catering. Thank you for your incredible love and support in making Aga's the number one Indo-Pak restaurant in the nation. We are also proud sponsors of the very popular Purani Din's signature radio show.
0: आगाज जाने के बाद लोगों की स्किल्स चेंज होती जा रही हैं। लोग अब दोनों हाथ समल्टेनियसली यूज करने लगे।
1: अरे घुटना यूज करते हैं। बात करो हक की चाहे हट जाए सब।
0: बहुत उम्दा बहुत।
3: लजीज डाइनिंग और आला तरीन केटरिंग सिर्फ और सिर्फ आगाज।
4: अपना घर अपनी जन्नत, फास्ट अप्रूवल्स, बेस्ट डील्स, अपना परफेक्ट होम आज ही सिक्योर करें विद लिबर्टी होम मॉर्गेज, योर ट्रस्टेड इंडिपेंडेंट ब्रोकर। चाहे आप फर्स्ट टाइम बायर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वेटरन हो, इन्वेस्टर हो या क्रेडिट थोड़ा लो हो, लिबर्टी होम मॉर्गेज आपके लिए बेस्ट मॉर्गेज ऑप्शंस कंपेयर करता है। ऑप्शंस इंक्लूड नो इनकम वेरिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट, पीएनएल, कन्वेंशनल, जंबो, रीफाइनेंस, कैश आउट, हीलॉक और पोर्टफोलियो लोन्स भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल। होम लोन्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं लेकिन लिबर्टी होम मॉर्गेज प्रोसेस को सिंपल और क्लियर बनाता है। यू कैन ऑल्सो रीफाइनेंस विद अ 2-1 रेट बाय डाउन। कॉल या टेक्स्ट करें असलम मंसूर को 713-955-4685, दैट इज 713-955-4685, और अप्लाई ऑनलाइन एट libertyhomemortgage.com। लिबर्टी होम मॉर्गेज NMLS 321164, इक्वल हाउसिंग लेंडर। ऑल लोन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, अप्रूवल टर्म्स एंड कंडीशन।
5: अमेरिका में अपना फ्यूचर बिल्ड करना आसान नहीं होता। इस उम्मीद से भरी जर्नी में अक्सर कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क का सामना करना पड़ता है। चाहे आप अपने ड्रीम करियर को चेस कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो, इस पूरी जर्नी में आप अकेले नहीं है।
6: अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अटॉर्नी ज़ैनब कियानी रिज़वी। मेरे लॉ फर्म पिछले 7 साल से लीगल एडवाइस और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा लॉ फर्म की तमाम केसेस हैंडल करते हैं जैसे E2, H1Bs, L1s, OP और बहुत से दूसरी कैटेगरीज। हम तमाम ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस फाइल करते हैं जिनमें फैमिली और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी शामिल है, EB1, NIW, EB2, 3 PERM एप्लीकेशंस और EB5 इन्वेस्टमेंट केसेस। हम असाइलम और सिटीजनशिप केसेस पर भी पूरी मेहनत से काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करते और उनको USCIS ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं।
5: Your dream, our mission. Call Law Offices of Zainab K. Rizvi at 713-297-9131, 713-297-9131 or visit zkrlaw.com.
7: Zindagi ek dukaan khilonon ki, waqt ek bigda hua sa bachcha hai. Baat jab ghar ki ho, business ki ho ya sehat ki ho, main bahut protected feel karta hoon. Humaira Jumani Insurance ke saath. Humaira Jumani Insurance. Reliable, efficient and excellent rates. Jab bhi kisi ko nasihat karni ho to alfaz aur andaaz naram apnana chahiye. Mera maqsad tha dastak dena, darwaza kholna aapka kaam hai.
8: To get yourself protected today, visit sanadainc.com or call 972-838-0313. 972-838-0313.
7: Humaira Jumani Insurance.
9: This is a boarding call for flight NK7946. All the passengers who are traveling through Horizon Travel, you guys are very special. Welcome on board.
10: Of course you are. Horizon Travel is the biggest consolidator for all major lines. Emirates, Qatar, Turkish Airlines. They also have amazing Umrah and Hajj packages. Aaj se nahi balki saalon se Horizon Travel apni community ki khidmat kar rahe hain. Unke paas special discounted rates bhi maujood hain har us jagah ke liye jahan aap jana chahte hain, jaise Karachi, Lahore, Islamabad, Mumbai, Delhi, Hyderabad. Call Zaheer or any of Horizon Travel's agent at 713-978-7202. 713-978-7202.
11: Where should we go next?
10: अब ये भी मैं बताऊं क्या? Call Horizon Travel at 713-978-7202.
12: This is a final call for departure. We are ready to take off. Fly high, fly with Horizon.

एक तो ये जो रोज रोज आपको किसी से प्यार हो जाता है ना, ये भी एक अपने आप में एक अलग कहानी है। कभी आप होते हैं आपको जनाब अपने आप से प्यार हुआ होता है, उसके बाद फिर मूवी से प्यार हो जाता है, फिर इस कुदरत से, नेचर से, सब्जे से, फिर भाइयों बहनों की मोहब्बत जागती है, बच्चों की मोहब्बत चल रही है, वाइफ से मोहब्बत होती है रोजाना अलग। कितनी वैरायटी रखते हैं ना, कितनी डाइवर्सिफाइड आपकी मोहब्बत होती है। एंड आई थिंक यू ऑल्सो बिलीव इन दैट कि इट हैज टू बी अ ग्रेट बैलेंस बिटवीन ऑल काइंड ऑफ रिलेशन यू आर हैविंग, चाहे वो सिबलिंग्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, नेबर्स, कोवर्कर्स, नेचर, हर चीज से मोहब्बत की जाती है। बस हर मोहब्बत की कुछ लिमिटेशन होती है जो खुदा ने हमें डिफाइन की हुई, और हम उन लिमिट्स को पार नहीं करते। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, मजे में, हाउस लाइफ, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, अनदर ब्यूटीफुल डे। खुदा का लाख लाख शुक्र कि हम एक बार फिर सांसें लेते हुए उठे उसी जोश वलवले के साथ कि अगर कोई इस वक्त दुनिया में डाउन है तो हम उसका साथ जरूर निभाएंगे। बुरी चीजों से दूर रहेंगे, अच्छी चीजों की तरफ बढ़ते रहेंगे, और हमारी ग्रोथ देखकर दुनिया अश अश कर उठेगी। वेलकम टू पुरानी जीन सिग्नेचर शो विद अली हैदर एंड नजम खुजलबाश, राइट हियर ऑन संगीत रेडियो 95.1 एफएम, 1460 एएम, sangeetradio.com, स्मार्टफोन पर भी हमारी ऐप मौजूद है। दिस शो इज ब्रॉट टू यू बाय आगाज, मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 से 10। आपकी जो मॉर्निंग राइड है ना, उसको हम जरा चुलबुला, मजेदार, चटपटा, नमकीन, स्वीट, जो नाम दें, जिस अंदाज से प्रसीव करें वैसा आप बनाना चाहते हैं। आगाज अच्छा होगा तो फिर दिन भी अच्छा गुजरेगा, और फिर जिंदगी में दिन अच्छा गुजरता है तो फिर रात भी अच्छी होती है। ब्यूटिफुल कनेक्शन आउट देयर। आज हम आपके साथ बिल्कुल भी वेदर और ट्रैफिक रिपोर्ट अपडेट नहीं देने वाले हैं, और जो इसका हमें जवाब देगा हम उसको जरूर कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दे देंगे। 2819335555 इज द नंबर टू स्टूडियो। शुरू होते ही तोहफे तहाइफ का सिलसिला कहीं सुन लिया था हमने, तोहफे तहाइफ देते रहना चाहिए क्योंकि इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। आज हमारे साथ असलम मंसूर भी होंगे अराउंड 9:20। लेट्स फाइंड आउट कि विदाउट इनकम वेरिफिकेशन आप घर कैसे हासिल कर सकते हैं। नो W2 रिक्वायर्ड, नो टैक्स रिटर्न्स रिक्वायर्ड, नो 1099 इज रिक्वायर्ड। विदाउट इनकम वेरिफिकेशन विद जस्ट ओनली योर इंडिविजुअल, योर पर्सनल और बिजनेस बैंक डिपॉजिट्स आप कैसे घर खरीद सकते हैं। एंड डोंट मिस आउट द इंटरव्यू विद The sales manager of Car Market Auto Group, Ahmed from Car Market Auto Group, around 8:40. So let's find out what's going on in the Car Market Auto Group for you. कौन सी cars आपके लिए available हैं? कौन सी deals चल रही हैं इस weekend के लिए? You will find out everything around 8:40. पर उससे पहले हम आपको आज कोई news नहीं देने वाले हैं about weather or traffic. आप में से कोई हमें बता सकता है कि ऐसा क्यों होगा?

बाय द वे आज मैं सुबह सो के उठा ना, मुझे लगा मेरी हाइट बड़ी हो गई। ये आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ किसी दिन अचानक सो के उठे हो ना, आपको लगा हो कि मेरी हाइट बढ़ गई है या मेरा वेट बढ़ चुका है, एकदम इंस्टेंट जो फील आती है, ऐसा कभी जिंदगी में फील हुआ है? बड़ी अजीब सी फील नहीं है आपको, लाइक अचानक से आपको एकदम रियलाइज हो कि आप लंबे हो गए, या आपको एहसास हो अचानक से रियलाइज हो कि आप मोटे हो गए या दुबले हो गए। एंड द वर्स्ट एंड द वियर्ड पार्ट अबाउट दिस इज दिस के आई थिंक वो हो रहा होता है काफी टाइम से, बट आप डिनाइल के अंदर होते हैं। एंड देर वॉज अ मोमेंट, देर वॉज अ डे ऑफ रियलाइजेशन, ये नहीं भाई अब एक्सेप्ट कर ही लो, अब तो सारे जहान को दिख रहा है। ऐसी सी कभी कोई फीलिंग हुई कि रियलाइजेशन वाली? आज पता नहीं मुझे सुबह हुई है कि मैं अचानक से लंबा हो गया। हालांकि आई डोंट थिंक इस एज में कोई लंबा हो सकता, बट अब हुई है रियलाइजेशन तो क्या कर सकते हैं हम। वो तो पता है रियलिटी इज ऑल बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से शुरू होती है और रियलिटी पे खत्म होती है। We are not sharing any weather or traffic news with you today. Why? 2819335555. All the beautiful people out there. Assalamu alaikum. Kya hal chal hai? Bade pyare lag rahe hain. Kuch matti matti si khushbu aa rahi hai. Folk andaaz mein. Juma Mubarak. Happy Friday to all of you.

वही हमें लेके चले जाते हैं हमारी पुरानी यादों में, जहाँ हमारी मंगनी की रस्में हो रही होती थी या मायो हो रहा होता था, वो शादियां जो हम बहुत मिस करते हैं यहाँ पर। बल्कि अगर देखा जाए तो अब वो काफी हद तक यहाँ पर उसका एक अक्स नजर आता है आपको यहाँ की वेडिंग्स के अंदर। यहाँ भी अब लोग रिक्शे में अपनी बरातें लेकर आ रहे होते हैं। बोल जिंदगी इसी का नाम है, आपके अंदर जो चीज बसी होती है उसको निकालना आसान नहीं होता, स्पेशली चाइल्डहुड और टीनेज के अंदर। वो जो फाउंडेशन है वो एक अपनी बुनियाद कायम कर लेती है, फिर आप जहां दुनिया में जाते हैं आप उसका असर छोड़ते हैं, उसे वहां एक और नए अंदाज से नए दौर के हिसाब से तशकील देते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आज हम इसलिए एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं शेयर कर रहे क्योंकि एक्सीडेंट नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई और बात है। बताइए, जरा सा इस्तेमाल करें, किसी पर्पस के तहत रखा गया है आपके जहन में, जिसे ब्रेन कहते हैं। Come on, 2819335555. आज हम वेदर और ट्रैफिक रिपोर्ट आपके साथ क्यों नहीं शेयर करें?

0: इतने उदास क्यों हैं? परेशानियां किसको नहीं होती?
1: आप जिंदगी की परेशानियां भुलाना चाहते हैं
0: तो आ जाएं हमारे पास, मिलकर थोड़ा हंस बोल लेंगे।
1: इस बहाने हम भी थोड़ा सा जी लेंगे।
0: हमारा वादा है, आपका पूरा वीक यादगार बना देंगे।
1: जी हाँ, रोजाना सुबह 7 से 10 तक, यानी मंडे टू फ्राइडे आपसे मुलाकात होगी।
0: मैं हूँ आपका अपना अली हैदर, और मेरे साथ जगमगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि खिलखिला रहे हैं
1: नजम कज़बाश, और मेरा काम आप बहुत खूब जानते हैं।
0: बस कर दो ह्यूस्टन वाले हमको, और हम अपने ह्यूस्टन वालों को बहुत खूब जानते हैं
1: अली भाई तैयार हैं?
0: हाँ ना नजम भाई,
1: तो फिर हो जाए।
2: अमेरिका में अपना फ्यूचर बिल्ड करना आसान नहीं होता। इस उम्मीद से भरी जर्नी में अक्सर कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क का सामना करना पड़ता है। चाहे आप अपने ड्रीम करियर को चेस कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो, इस पूरी जर्नी में आप अकेले नहीं है।
3: अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अटॉर्नी ज़ैनब कियानी रिज़वी। मेरे लॉ फर्म पिछले 7 साल से लीगल एडवाइस और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा लॉ फर्म के तमाम केसेस हैंडल करते हैं, जैसे E2, H1Bs, L1s, OP और बहुत से दूसरी कैटेगरीज। हम तमाम ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस फाइल करते हैं जिनमें फैमिली और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी शामिल है, EB1, NIW, EB2, 3 PERM एप्लीकेशंस और EB5 इन्वेस्टमेंट केसेस। हम असाइलम और सिटीजनशिप केसेस पर भी पूरी मेहनत से काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करते और उनको USCIS ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं।
2: Your dream, our mission. Call Law Offices of Zainab K. Rizvi at 713-297-9131, 713-297-9131, or visit zkrlaw.com.
4: अपना घर अपनी जन्नत, फास्ट अप्रूवल्स, बेस्ट डील्स, अपना परफेक्ट होम आज ही सिक्योर करें विद लिबर्टी होम मॉर्गेज, योर ट्रस्टेड इंडिपेंडेंट ब्रोकर। चाहे आप फर्स्ट टाइम बायर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वेटरन हो, इन्वेस्टर हो, या क्रेडिट थोड़ा लो हो, लिबर्टी होम मॉर्गेज आपके लिए बेस्ट मॉर्गेज ऑप्शंस कंपेयर करता है। ऑप्शंस इंक्लूड नो इनकम वेरिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट, PNL, कन्वेंशनल, जंबो, रीफाइनेंस, कैश आउट, HELOC और पोर्ट पोर्टफोलियो लोन्स भी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल। होम लोन्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन लिबर्टी होम मॉर्गेज प्रोसेस को सिंपल और क्लियर बनाता है। यू कैन ऑल्सो रीफाइनेंस विद अ 2-to-1 रेट बाय डाउन। कॉल या टेक्स्ट करें असलम मंसूर को 713-955-4685, दैट इज 713-955-4685, और अप्लाई ऑनलाइन एट libertyhomemortgage.com। लिबर्टी होम मॉर्गेज, NMLS 321164, इक्वल हाउसिंग लेंडर। ऑल लोन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, अप्रूवल, टर्म्स एंड कंडीशंस।
5: सर्दी में धूप जैसे
6: जैसे भूख में आगाज,
5: जैसे भूख में वाह,
6: जैसे भूख में आगाज।
5: वाह, क्या एंगल दिया है।
6: जाके देखें, अगर आप नए आए हैं इस सिटी में, बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो पूछ रहे होते हैं, भाई बताए ना यहाँ कोई अच्छी जगह खाने की।
5: बिल्कुल,
6: कोई अच्छी जगह नहीं है, एक ही जगह है अच्छी खाने की,
5: बेहतरीन है,
6: ऐसी कि अगर भूख लग गई है और वो जगह आपके सामने आ गई है,
5: खाई नहीं रुकेंगे,
6: तड़प जाएंगे, मैं बता रहा हूँ,
5: जाएंगे, मचल जाएंगे।
6: अल्लाह, एक पेट है और आगाज इतना बड़ा है।
5: आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया आगाज की तरफ से, शौकत भाई की तरफ से।
7: Hello Houston, I am Shaukat Maredia from Aga's Restaurant and Catering. Thank you for your incredible love and support in making Aga's the #1 Indo-Pak restaurant in the nation. We are also proud sponsors of the very popular Purani Din's signature radio show.
5: आगाज जाने के बाद लोगों की स्किल्स चेंज होती जा रही हैं। लोग अब दोनों हाथ समल्टेनियस यूज करने लगे, अरे
6: घुटना यूज करते हैं। बात करो हक की, चाय हट जाए सब।
5: बहुत उम्दा, बहुत
8: लजीज डाइनिंग और आला तरीन केटरिंग, सिर्फ और सिर्फ आगाज।
9: जिंदगी एक दुकान खिलौनों की, वक्त एक बिगड़ा हुआ सा बच्चा है। बात जब घर की हो, बिजनेस की हो या सेहत की हो, मैं बहुत प्रोटेक्टेड फील करता हूँ हुमैरा जुमानी इंश्योरेंस के साथ। हुमैरा जुमानी इंश्योरेंस, रिलायबल, एफिशिएंट एंड एक्सेलेंट रेट्स। जब भी किसी को नसीहत करनी हो तो अल्फाज और अंदाज नरम अपनाना चाहिए। मेरा मकसद था दस्तक देना, दरवाजा खोलना आपका काम है।
10: To get yourself protected today, visit sonatainc.com or call 972-838-0313. 972-838-0313.
9: Humaira Jumani Insurance.
10: This is a boarding call for flight NK7946. All the passengers who are traveling through Horizon Travel, you guys are very special. Welcome on board.
11: Of course you are. Horizon Travel is the biggest consolidator for all major lines. Emirates, Qatar, Turkish Airlines. They also have amazing Umrah and Hajj packages. Aaj se nahi, balki saalon se, Horizon Travel apni community ki khidmat kar rahe hain. Unke paas special discounted rates bhi maujood hain. Har us jagah ke liye jahan aap jana chahte hain. Jaise Karachi, Lahore, Islamabad, Mumbai, Delhi, Hyderabad. Call Zaheer or any of Horizon Travel's agent at 713-978-7202. 713-978-7202.
12: Where should we go next?
11: Ab ye bhi main bataun kya? Call Horizon Travel at 713-978-7202.
10: This is a final call for departure. We are ready to take off. Fly high, fly with Horizon.

वेल, ये हंसते मुस्कुराते चेहरे, यकीनन कुछ ना कुछ अच्छी याद तो आपके जहन में चल ही रही होगी, या तो कोई अच्छी सी याद होगी जिसे सोचकर आप चेरिश कर रहे हैं, या फिर आप आगे कुछ बहुत अच्छा सा विजन कर रहे हैं, या फिर आप मोमेंट को अपने आप में महसूस कर रहे हैं। अब चाहे आपने विंडो रोल की हुई हो और ठंडी ठंडी हवा को अपने चेहरे पे महसूस करें, या अपनी आंखों से सब्जे से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। बंदे, हम न्यूज एंड वेदर इसलिए आपके साथ आज शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज है नो न्यूज इज द गुड न्यूज डे, यानी कोई खबर ना होना तो बस समझे अच्छा ही है। हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां हमारी तरफ चारों तरफ से भरमार है, आप कोई भी सोशल मीडिया उठाते हैं, टीवी चैनल खोलते हैं, अपनी पड़ोस या पड़ोसन के साथ बैठ जाते हैं, आपको कोई ना कोई न्यूज आपके कानों में, आपने सुना है कल क्या हुआ वहां पर, जानते हैं छोटे से टाउन के अंदर, गुजरांवाला के शहर के, जिसके अंदर यहाँ कुछ ये हो चुका है, या फिर आप जानते हैं इंटरनेशनली बेसिस के ऊपर यूएन ने ये फैसला किया है कि भी। ऐसी हजारों बातें 24 घंटे आपके कानों से गुजर रही होती हैं। अपने बच्चों को महफूज रखिए, आप जानते हैं कि आजकल किस तरह के लोग घूम रहे हैं, well, non-stop is the news broadcasting in your ears through all social media platform and digital media platform and the mainstream. So एक दिन आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, नो न्यूज इज द गुड न्यूज डे, टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ न्यूज। Relax, chill.

Well, good morning. Assalamualaikum. Welcome to the Purani Jeans Signature Show. 281-933-5555 is the number. आज आप जानते हैं, आज in addition to all those days that we're talking about, आज Stand Up to Cancer Day है. September 11 को Stand Up to Cancer Day celebrate किया जा रहा है. This is always the second Friday of September, जहां ये दिन celebrate किया जाता है. रैलीज निकाली जाती हैं, स्टैंड अप टू कैंसर डे रैलीज सपोर्ट एवरी सेकेंड फ्राइडे ऑफ सितंबर, यूनाइटिंग इंडिविजुअल्स इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट कैंसर. जो लोग भी इससे गुजर रहे होते हैं या जो लोग जिनके फैमिली मेंबर्स इससे गुजर रहे होते हैं, वो लोग वाकई अपने आप में फाइटर होते हैं, अपने आप में एक मिसाल होते हैं, इंस्पिरेशन होते हैं फॉर ऑल दोज पीपल जो कभी कभार किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं. उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन के सामने आते हैं कि देखो तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है, हम समझते हैं वो भी परेशानी है, मगर इधर भी नजर करो, देखो कि कितनी बड़ी परेशानी हमारे ऊपर भी है, मगर हम फिर भी गुजर रहे हैं. और जानते हैं, ये वो लोग होते हैं जो इस बात पे भरोसा रखते हैं कि जब भी जिंदगी में कोई परेशानी आपकी जिंदगी में आती है, तो उससे पहले खुदा आपके अंदर उसको परेशानी को हैंडल करने की ताकत भर देता है. अगर हम नहीं मुकाबला कर पा रहे होते, तो ये हमारी ना अहली तो नहीं कहूंगा मैं, मगर हमारी नजर नहीं होती उस चीज की तरफ, हमारा ईमान नहीं होता उस चीज की तरफ से. द मोमेंट वी हैव फेथ इन दिस कि नहीं, हमारे अंदर ऑलरेडी एक पावर मौजूद है, हमें दे दी गई है, हमें इक्विप्ड कर दिया गया है विद ऑल द स्ट्रेंथ एंड वेपन्स एंड गुड ट्रेड्स टू फाइट विद दोज थिंग्स. अचानक से आपको लगेगा कि अब सब कुछ आसान हो गया है, मुश्किल बहुत छोटी लगने लग जाती है. दिस क्रूशियल डे एम्फेसाइजेस अवेयरनेस, फंड्स ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च एंड ऑनर्स दोज अफेक्टेड बाय द डिजीज. जॉइन द मूवमेंट बाय डोनेटिंग, शेयरिंग योर स्टोरी और एडवोकेटिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन. और ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इसमें नोट करें. एक मेंटेनेंस रिलेटेड है, यानी कि आप जल्दी डिटेक्ट कर लें अपने आप, कोई चीज लहतुलाल में मत डालें. अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं चल रहा है, गो गेट योरसेल्फ चेक्ड अप विद प्रोफेशनल्स, ताकि वो चीज अर्ली स्टेज में आपको पता चल जाए. एंड इन दैट वे यू कैन ईजिली, डॉक्टर्स कैन ऑल्सो हेल्प यू मच ईजियर देन इफ यू गो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. इस बात को लेकर मैं एक छोटी सी बात कोट करूंगा कि यहां पे जो सबसे ज्यादा दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यूरोप की कंट्री है, नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं. वहां जो एक मेन रीजन बताया जाता है कि वहां इंडिविजुअल्स की एवरेज लाइफ सबसे ज्यादा क्यों है, उसमें एक मेन रीजन एडवांस्ड मेडिकल सिस्टम है जो आसान कर देता है हेल्थ केयर आपके लिए. और आसान करने से फायदा ये होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते नहीं है कि उनकी जेब से इतने पैसे खर्च होंगे, उनके लिए अफोर्डेबल बना दिया जाता है, जिस वजह से वो जो बड़ी बीमारी होती है उसको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाती है वो, और फिर उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से कर दिया जाता है. सो दिस इज द मेन रीजन जो वहां पर कंसिडर किया जाता है कि वहां क्यों एक एवरेज लाइफ ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज.